तो माता मचव नुई तेरांगी क्या तपु तो इनवा क्या ताई मई तो उड़ंग चिड़ा तंगा क्या मेथिया ताऊ ए पाया किरुंगी ते फिनुआ क्या रीते अनो की तो तेरांगी हो मई क्या माता आया ने हे तारो मम्मा तो मोते नहीं बुरुआ ओ माता हरा मैं माता होकी ए मुरु नहीं इो ते हुंगा ए हरा न क्या माता कौ हो कि माता ए कौया क्या फकवाया एंगारी फक ओरंगी माता विदिनो नो हो कि तेरंग थी तंगा ते कहा मे ते करोरिया आके आके आके आमीने।